रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखां किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, करम मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवा विसरे मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागे भूख। पुत भूखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सूग। देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाही कोए। ना को हुआ ना को होए,

बात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंतु उपाए, ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। उडे ऊड आवे सै कुसा, तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावहो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मै सुख वासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो भाव है मेरे हर भगवंता,
तू आद पुरख अपरम प्रकर्ता जी, तुद जे वड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मेल विछोड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ। जाप तप संयम धर्म न कमाया सेवा साद न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा सरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरे करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर खो करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत।

अंडज जेरज सेतज कीनी ओत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे पुरख

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नाही घर तेरा है सचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे दुख

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। एह वासत तजी नह जाई, नित नित राख उरतारो। तम संसार चरण लग तरीय, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

ककल कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवान सागल समागिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे का

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासवती पाशी दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक रही त्याय फिर कुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण निधि आवैता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पित्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पारदार अंतर के घर से बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जा रहे चाली मुक्त हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपया वन चक्या दे चलाई ते वाही देख नेड़ की तदना प्यारे हथे चार नहीं कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हा सिंह सिंघनिया धर्म ही सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लगाईया चैकड़िया चढ़े आने नजर आए गए गुरुद्वार सेवा की कुर्बानियां की अंदर नहीं आ रहा से किसी देखे सत्संग निभाए तिना की कमाई दते अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वार अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चेता वह चित आवण का सर का सर सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तरत देखते की फतेह बृद की पै पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत तुझी मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की बनवाज पंथ सदा सहाज देता आज दियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ न छोड़े अगले गुरफले दर्शन दीदार अरे सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी नख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोए कर जोड़ कर अरदास तुत भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास ने राजा बख्शी की है आपके चरण पितर गुरबाणी सुखम साल संपूर्ण पढ़ दिता ऐस वे संध्या समय जान के आपके चरण सोधर रास आप पाठ की कृपा करो हुईया भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत्खंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे सारी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी चाणी बल बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप दी बख्शिया दाता पितर कड़ाप शादी देगा तैयार करके हाथ ने दसार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संगत दसना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो जी बनवाद उतार जियो मेहर करो आप दख्शिया दत्ता जो लंगा देगा जी और तुर सवार प्रबंध करनी गिमराज कृपा करो अमृत वे तो लाके दरते आई साफ संगत हाजिर दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत दरते तिर फुल पेटा बनाओ शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु गिमराज कृपा करो दुतार आप चरना सेवा कर रहे सारे प्यारी सिंह सिंगनिया तंदुरुस्ती बख्शो चादगर बख्शो अति सदा ही इस अपने चरना सेवा की भाण भक्ति बालता करो गरीब नवाज कृपा करो खालसा पंथ सिखों एकता दुआग प्यार की बख्शिश करके चरण ना जुड़ो करवाने पैरों से बालता करो जी गुरु गरीब नवाज दूर दराज बैठी लाइव कथा की सरण कर रही सारी संगत की हाजिरी भवन करो करनिया लिख लो तो तार अपनी कृपा की संगत ने उदम बख्शन संगत आप चरण धनबाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें बेअंत माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा संघ संगत माया पेटा के चरण प्रवान करो बख्शा साहब की कमाइया सबल करो कार्य वाद सार संगत शुभकामना समाधान पूरी करो जी तार मेहरान कर आओ सेवा प्रवान करो पुनत कमाई बख्शो पुत्र को नमी बख्शी करके ब्रंथ अज दिशा कथा की दमता वास्ते आगा बख्शो रेंदे कार सवार के बनाओ सही प्यारे मेरे जिले बनाता नाम जता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने प्रभात। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भाई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो

सुनहार रात्रियाकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

रहो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर द्रगै को कैसे गवै आपस कह जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब किरीन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जन मुझ ते कश होए ताबे सुखो सुख नाही कोए जबे जन मैं किश करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस कटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या की करे नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कैसे किनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिनसै आवे न जाए नानक साध ही रहा समाए आप उपदेश है समझे आप आपे रचया सबके साथ आप की नो अपन बिस्थार सब काश उसकाओ करने हार उसते पिन कहो किश होए थान तनंतर एक सोए आपू ने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मिलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी करै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन के दुखन सर्प ज्यों पाए संत कह दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलै संत कह दुखन सब को शलै संत कह दुखन तेज सब जाए संत कह दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै था ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खेन टेकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसी का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख न सुख ते टरै संत के दुखी को नाही ठाओ नानक संत भावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे संत के दुखी को उद्यान प्रमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कौ अवर न रखन हार नानक संत पावै तां लै उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईधनी त्रापै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत

पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरहु गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो साध संग, अग्न सागर तरहो हर पन के पर लेहो पंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोबिंद अमृत रास पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोकह निसतार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भए गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव, आल जंजाल बेकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र बेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिसराम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत किरपा ते जम ते छुटै, जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से

सीपी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाणप लख हुए ता इक न चले नाल। किव सचियारा हुई है किव कूड़ै तुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्सीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई।

जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ते हा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाल सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाल सुने ईश्वर वर्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जोग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाल सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का इसनान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सरा गुणा के गाह सुने सिख पीर पातशाह सुने अंधे पावह राहु सुने हाथ वै सगाहु नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही ना जाय जे को कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हारु मन्ने का बह करन विचारु ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से तीसन बंधु ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मोख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरह तारी गुरु सिख मन्ने नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं सुमार ताओल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सब न लिखिया बुड़ी कलाम ए हो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचारु वारिया ना जावा एक वार जो तुद भाव है साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाऊ असंख पूजा असंख तप ताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गालवट हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पाख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वकान जिन हे लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव तिपाहे
जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही को थाउ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै उतर सुखे भूत पलि

नाही कर कर करना लिख ले जाहु आपे बीज आपे ही खाहु नानक हुक्मी आवहु जाहु तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाऊ अंतरगत तीरथ मल नाऊ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाऊ सत सुहान सदा मन चाऊ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाईया पंडती जे हुवै लेख पुराण वक्त न पायु का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वारना जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सूहै पाताल पाताल लख आगास आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लिखा हुए तां लिखीऐ लिखै हुए विनाश नानक वड्डा आखी आपे जाने आप साला ही साला हेती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी।

अनाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी बाओ लख हुए लख हो वै लख वीस लख लख गेड़ा या की है एक नाम जगदीश हेत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्ला आकाश की किटाया ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मर नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम नेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उत्थै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहु धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते काण महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुर सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोद महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लो करहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जी को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जी हुकम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौख लागन तपताऊ भांडा भाव अमृत तिटाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत

ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਛਪੈ ਛੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਸਾਹਿ ਸਾਹਣ ਗਣੀ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤਜਬੇ, ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਵੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਚੰਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਝਾਂਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰੇਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੀ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰਗ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ,
नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो अप्रे नमो प्रेत अप्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने मु मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं परनाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद करता अदो उर्द अर्दंगा गंगो गहरता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग अछेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तोपराजी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्तुंग नरनाथे नमस्तुंग परमाते नमस्तुंगा गंजे नमस्तुंगा पंजे नमस्तुंगा काले नमस्तुंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट छंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुर कपार सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त जौन आद शेख देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम हीन पेख ताम हुनह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जानहि जे बेद और कतेव रूप रंग न जात पासो जानि के जीव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुर तीन लोक चौदह के बिकै जग जापी जे जाप आद देवनाद मूर्त थाप्यो सबै जे था परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अर रेख परम वेद प्राण जा कह नित भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वै वचित मद पार शंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल अनपूत अंग आबा अपांग गत मित अपार गुण गन उदार मुन गन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ्य अंड वाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी
चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चांदना सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र परथी सह अधि सह अधरी सह कृ सह भगवती चंत्व प्रसाद कथते के आचिज दे सह के आज पिश के आगंज कर्म के आज परमे के आज लोक कह के आदित सो कह के अवतूत वर्ण के बेभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अधेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक है अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के फूल गुनाह है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी ध्यान है के राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र पेकी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पिश है के सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं काली मैं के परमंग फही मैं के आकल अला मैं के साहिब कला मैं के हुस्नल वजू है तमामुल रजू है हमीसल सला मैं सलीखत मुदाम गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजाय यकीन है अनेकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है अवंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिभाधे अगंजी अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है प्रतुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवंग सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है नित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक अमितो अमेक सदैव प्रभा अजय अजाह भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किराय के नरकंग प्रनाश है वैस्तुल निवास है के सर्वल गवान है
हमेशुल रवान है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जरूरत जमाल है के चलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो प्रसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग नंग है कि मितो अभंग है मत पार छंत प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड दिश्विश अपंड जलथल महंत दिश्विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजान बाहु इक्कै सुदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जपै थपा थपै कृता कृत्य अमृता मृत्य अमृता मृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित्य अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृता मृत्य अजबा कृत्य अमृता मृत्य निर्णायक है खलकायक है विस्वंपर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्घंजन है रिपतापन है जप जापन है कृंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अवय पू अजू नासका सगंज पंज लख पक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गाह अटा नाथे प्रमाते अजो नियमो निराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुख

क्या तुद कर्म कमाया, कि कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक इहो शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। एहो वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझे आ जा, वेखा हर इक है, हर बिन अवर न कोई, कह नानक नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। हे श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नु पठाए, साचे सुनने नु पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, साचल कविडाणी ताकि गत कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, साचे सुनने नु पठाए। हर जियो गुफांदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, कना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नव नव निद, तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे, जियो गुफांदर रख कै, वाजा पवन वजाया। इहो साचा सोहेला साचे कर गावहु, गावहु ता सोहेला कर साचे, जिथे सदा सच ते आवहे, सचो ते आवहे, जा तुद पावहे, गुरमुख जिना बुझावहे। इहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे। कह नानक सच सोहेला।

सब सिखन को हुक्म है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देहे, जो प्रभ को मिलबो चह, खोज शब्द में राज करेगा खालसा, आकी रह न कोई, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो

है, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ न सूझै, ए जतन काट कलकाल। कि ए भाई, होर किसी भी तरीके दे नाल, किसी भी जुगत दे नाल, किसी भी कर्म दे नाल, मनुख दे गल विच जो जमां दी फाही पई हुई है, मनुख दे गल विच जो जमां दी रस्सी पई हुई है, किसी भी यतन नाल, किसी भी तरीके नाल, किसी भी बल नाल उनू अपने गले चो कटिया जां उतारिया नहीं जा सकता। हर मनुख जम दे वस है, काल दे वस है, मौत दे वस है, पर जिन्हां नू गुरु ने कृपा करके तरस करके अपना बना लिया है, जिन्हां नू अपने गुरमुख प्यारियां दी संगत बख्शी है, जिहड़े गुरमुख प्यारियां दी संगत विच बैठ के काल दा भी जो काल है वह अकाल पुरख वाहिगुरु उस नू त्यौंदे ने, उस नू सिमरदे ने, उस नू आराधदे ने, उस अकाल दी शरण विच जो भी जीव प्राणी चला जांदा है उहदियां काल दियां फाहियां मिट जांदियां ने, काल दे संगल टुट जांदे ने, वह अकाल दी कृपा दे नाल मौत तों जमां तों मुक्त हो जांदा है। वाहिगुरु परमेश्वर उहदे हर तरह दे दुख नू, दर्द नू, पीड़ा नू निवार दिंदा है, क्योंकि वह ठाकुर दी शरण विच चले जांदे ने, इह पुकारां करदे ने, दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। वह अपने जन दी, अपने सेवक दी, अपने भगत दी आप रखिया करदा है, लोक दे विच वी, परलोक दे विच वी, इत्थों दे दुखां तों वी ते अगे दे दुखां तों वी, पापां तों वी परमेश्वर बचांदा है। इस करके जो भी उस परमेश्वर दे प्यारियां दी सत संगत विच आन के जुड़दा है, सत संगत दियां घड़ियां दा लाहा प्राप्त करदा है, सत संगत विच बैठ के परमेश्वर दे नाम नूं आराधदा है, क्योंकि संगत दा मतलब है जिथे परमात्मा वाहिगुरु दी कीर्ति हुंदी होवे अते असीं उस कीर्ति विच जुड़ जाइए। सत संगत कैसी जाणी है, जिथे इको नाम वखाणी है, जिथे एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दी सिफत तों सलाह हुंदी होवे असीं उहदे विच शामिल हो जाइए तां असीं सतसंगी बन जावांगे। जो सतसंगी बन जाएगा उहदे दुखां नूं, कलेशां नूं वाहिगुरु परमेश्वर स्वामी आप निवृत्त कर दिंदा है, जमां दी फाही भी कट दिंदा है। गुरु कृपा करे सानू अपने दरों करों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके सतगुरु जी निवाजन। समूह संगत दे चरणा विच बेनती है कि साढ़े पास 27 मई तो लैके 31 मई तक सिख पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी पहुँच रहे हैं, वो आप जी ने अमृतमई गुरबाणी के कीर्तन नाल जोड़नगे। सो आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भर के गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करनिया हैं। 23 मई नूं प्रथम गतका मुकाबला है इस पावन पवित्र स्थान ते, सो आप जी ने उस पावन पवित्र सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने जो शस्त्र अभ्यास सिंघां नूं दिता है, प्रदान किया है, जो बच्चियां ने जोहर विखाने हैं आप जी ने उहदे विच भी हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने हैं जी। आओ हुण अमृत बाणी आशा की वार दे कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी इन्हां दे जत्थे पासों आपां सरवण करने हैं। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, समूह संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रण जना मिंचाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार बोलू चरखा चक्की चक थल वालो ले बहुत अनंत लाटू माधाणी आन गा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पुआई जन नानक पौंदिया गणत नान
1: मंदन मंत पवाए सोए पै कृष्ण च नचे सब कोई नच नच हसे चले से रोई

मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार घट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोए बप्पे चट लंग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर कने न पायो।

0: अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नावे किछ थाए ना पाई।
1: बाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे।

0: मुख द्वार। जति सदा वै जुक्त न जाने छड़ बह कर बार। सबको पूरा पे हो वै कट न कोई आख। पथ परवाना पिछे पाइय नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: नानक सचा वेखे सोए सब निशाला मरिया करता करे सोए। अगै जात न जोर है अगै जियो न मैं जिनकी लेखे पत पवे। चंगे से कहे पौड़ी तुर कर्म जना खुद उत्पाया। ता तिन्नी

मत्थे टिका तेड़ धोती खाई हथ फिर जगत का साई नील बस्त्र पैर होए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कसे ना।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नाए किसे कहरी भाज सचे नाए दरबाटे ऊपर खर्च मंगा

सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आरसी पोती पाछे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्या है फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई तो सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावता है सब ताई हुए सहाय दसवें पाछिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब ताई हुए सहाय दसा पाची के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार अंतर के हर सस बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन महाराज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुहते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया दे चलाई ते वाही दे ढिट किया तना प्यार सत्यार की कमाई का अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म ये सी ही दिते बंध बंध कटवाए खोपरियां लवाईया चरखड़िया से चढ़े आर नजर आए गए गुरुद्वार सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म ने आ रहा से किसी दिखे सरसा सत्संग भाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा गुरुद्वार का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु। नाम चेता वह चित आमण का सदका सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियाज देखते की फतेह बिरत की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नहीं वह मत तुझे मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की वाह पंथ सदा साहिब दताया जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ न छोड़िया गया सिद्धार्थ सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुझ भावे तो आने रास। हे गरीब नवाज जी आपके चरण कावना अरदास उतार जी अपने बख्शिश की है आपने कृपा की उतार जी अमृत वेले प्रकाशमान हुए संगत दर्शन दस देखे हद उतार जियो बेअंत बाणियों के पाठ हुए एस वे रागी सिंह ने आपके चरण आशा की वार संपूर्ण किए ने विद्वान वीर ने अज को ना मेरी कथा तैयार की कृपा करो होइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदय वसानी कृपा सा करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी विचार की बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी आप दखियां दातों में पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद शाह संघत की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार अमृत वेल तो लैके दरती आई साफ संगत हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिख लाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु गरीब नवाज आपने बख्शी की आपकी बख्शियां दातों जो लंगर टुट सवारियां प्रवान करनी गरीब नवाज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंह सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो तो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शन की बालता करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार जी हो सिख कौम खालसा पंथ एकता स्वाग प्यार की बख्शिश करके सत दाल बख्शो चैनल जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो दतार हर मैदान दीवान फतेह बख्श करने की बात करो जी। गरीब नवाज दूर दराज कर बैठी लाइव कथा की सरण कर रही हैं सारिया संगत हाजरी प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ दतार आप संगत उदम बख्शे ने बख्शिश की अमेर की उदम बख्शे दतार आप चैनल धन्यवाद कर दें शुक्रिया अदा कर दें। गरीब नवाज दूर बैठे बैठिया संगत वालों बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर सेवा संगत संगत माया टाकारी चैनल प्रवान करो बहिष्कार साहब की कमाइया सफल करो कारोबार वाद बदार सार संगत शुभकामना सभा पूरी करो जी तार मेहरान कर आओ सेवा प्रवान करो पुत्र रंगवाही बुद्धतार पितर गुनामे बख्श कर ब्रंथ लड़ी वास्ते आज पाठ करने वास्ते आ गया बख्शो रहते कार सवार के चैनल प्रवानी बनाओ शुद्ध और पुत्र सेवा लिया की वादक दतार सही प्यारे मेरे जिले मेरे आपका नाम चता नानक नाम चढ़ती करा तेरे पानी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अज्ञा भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आगी रहे ना को ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े से उतरे बा
ਜੋ ਜਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹੈ ਸੀ।

वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करहै विचार मुक्त पाइय साध संगत बिनस जाए अंधार।

रहाओ। साध संग कछ पाओ ना पराती, गुण गोपाल गाय है दिन राती। कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवै जान नीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जाका मन लागा। दुख दर्द भ्रम ताका भागा, हर धन को व्यापारी पूरा। जिस है निवाजे सो जान सूरा, रहाओ। जाको पय कृपाल गुसाई, से जान लागे गुर की पाई।

प्रभ आपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह परवेश उच रहो राम नाम लाख बारी अमृत रस पीवहो प्रभ प्यारी रहाओ।

रहाउ। प्रभु ते आगो लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसह न जानह सुआन। कहो नानक हम लूण हरामी, बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां,

महा तपत सागर संसार, प्रभ खिन मह पार उतारण हार। अनेक बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुकत फल पाहे। उकत सियानप इस ते काश नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूरण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइय। पार ब्रह्म तू देह ता पाइय, रहाओ

प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगह पाईऐ मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूरन हर मीत, भ्रम बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाकै सिमरण जम नहीं डरुआ। रहाओ

हाथ। गौड़ी महला पंजवां, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे, जो

मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटे ओ बिक संसार। कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पाउ सरनाई जिन हर जाते। मन तन सीतल चरण हर राते। पै भंजन प्रभ मन न बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत जाही।

जनम जरा मृत जिस वास सुसमरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवां

उपकार। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादर वाल। गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी। मेल लए पूरन बड़भागी, रहाओ भरता पेख बिगसै ज्यों नारी। त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता। ओत पोत जन हर स्यों राता, लोभी आनंद करै पेख तना। जन चरण कमल स्यों लागो मना, बिसर नहीं एक तिल दा तार। नानक के प्रभ प्राण आधार। गौड़ी महला पंजवां,

तपीवै। गौड़ी महला पांजवा, धन ओह मस्तक धन तेरे नेत, धन ओए भगत जिन तुम संग हेत। नाम बिना कैसे सुख लही है, रसना राम नाम जस कही है। रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्बाण। गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल। ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई। रहाओ आगे आप इहु थान वस जाकै, आठ पहर मन हर कौ जापै। पत परवान सच निसान, जाको आप करहै फुरमान।

रास पीने। निर्भौ होए भजौ भगवान, साध संगत मेल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे न जलै, हर संग राते माया नहीं छलै। हर संग राते नहीं डूबै जला, हर संग राते सुफल फला। सब भय मिटहै तुम्हारे नाए, भेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ। हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सेओ सो रचै जिस साध का मंता। हर संग राते जमकी नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस। हर संग राते दुख ना लागै, हर संग राता अन दिन जागै। हर संग राता सहज घर वसै, हर संग राते भ्रम भौ नसै। हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए।

उद्यम करत शीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल घर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पुनीत पेखत ही दरस तन मस्तक चरण कमल ही परस गोबिंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन

किल बेखो गए, कहो नानक कहा पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई। गौड़ी महला पांजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई। प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूरण सच सोए रहाओ। अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे। कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पांजवा, दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूरन पाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई रहाओ। जो जो चित

राग गौड़ी बैरागण महला पांजवा इको ओंकार सतगुर प्रसाद दयो गुसाई मी तुला तू संग हमारे बास जियो रहाओ।

जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्तहो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे, सुप्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार, साध संग नानक भजै बिखतरिया संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के शांत के घर महला पंजवा, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। है कोई राम प्यारो गावे सर्ब कल्याण, सुख सच पाव।

रहाउ। बान बान खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वडभागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाह। जोगी जति सिद्ध हर आह, जिस है प्राप्त सो हर गुण गाह।

रहाउ। भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीक्षण मोह की फास। काटन हार जगत गुर गोबिंद चरण कमल ताके करहु निवास। कर कृपा गोबिंद।